ते पुरुष की मत भी जड़ होके रह गई। जितना सहारा ममता दा मारिया होया एक बच्चा मां बाप दे लई बन सकदा सी, धन उतना नहीं बन सकदा। लेकिन मनुख ने, स्त्री ते पुरुष ने जितनी धन दी चिंता की थी, औलाद दी उतनी चिंता ना की थी। आने वाला भविष्य ते बच्चियां दे हाथे सी, तो मनुख दा भविष्य बिगड़दा जा रहा है, बिगड़दा जा रहा है, क्योंकि बच्चे ममता तो हीण होंदे जा रहे ने, प्यार तो हीण होंदे जा रहे ने। अहंकार, घृणा, नफरत सारी दुनिया दे इस नवी पनीरी दे अंदर वध रही है, जिसका कारण है स्त्री दा पुरुष दे तल ते बैरूनी रूप दे बराबरी करना, और पुरुष दा इस बराबरी नो किसे हद तक कबूल करना और किसे हद तक विरोध करना। लेकिन इस नाल घर घर नहीं रहे, बस घर मकान बन के जो है रह गए ने। स्त्री दी अपनी महानता सी, और किधरे ये अपनी महानता नु समझ लवे तो घर मंदिर बन सकता है, घर हरि मंदिर बन सकता है। नहीं ते उजड़िया होया खोला, उजड़िया होया एक खंडर, इस तो बिना होर जो है कुछ भी नहीं होवेगा। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने स्त्री दा पक्ष पूरदिया होया के है, जे कुछ महान मनुखां करके संसार दा इतिहास रौनकीला बनिया होया है, वाकई इन्हां कुछ महान हस्तियां नूं इतिहास विचों कढ दईए, सारा संसार बेरौनक हो जांदा है, पर इन्हां हस्तियां नूं जन्म देने वाली मां ही ना आउंदी, ऐसी धरती ही ना आउंदी, तो ये फुल किथे खिड़ने सन, और संसार पुर रौनक किथे जो है बनना सी। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस वास्ते स्त्री नूं बराबरी दित्ती। दैवी गुणा विच भी कुछ गुण पुरुष ने, कुछ गुण स्त्री ने। ज्ञान पुरुष है, भक्ति स्त्री है, दया स्त्री है, पर इसके मुकाबले थे संतोख पुरुष है। इसी तरीके नाल सूरवीरता ये पुरुष है, लेकिन सहनशीलता स्त्री है। गिणदे जाइए शांति स्त्री है, क्रांति पुरुष जो है मन लीए, पर क्रांति शांति ते आधारित होवे, सूरवीरता सहनशीलता ते आधारित होवे, और संतोख दया दे आसे ते टिके होवे, ताई खूबी है और मानसिक तल ते आनंद है। जे मानसिक तल ते इस तरह दैवी गुणा दी लोड़ है जो स्त्री ते पुरुष ने, तो बाहर भी सुख अमन ते चैन बनया रहे, इना दोहां दी लोड़ है। और जितना महान पुरुष है उतनी महान स्त्री है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने गुरुद्वारियां दे दरवाजे दोहां लई खोल दिते, सत्संग दा आनंद दोवे माण सकदे ने, अमृत दोवे पान कर सकदे ने, और इस तल ते धार्मिक दोहां दी बराबरी, और पदार्थ दे तल ते दोहां दी बराबरी, किसे भी तल ते इस नूं पछाड़ के जो है नहीं सुटिया गया, अगाह बकायदा नाल रखिया गया, और हर तल ते इस दे गुणा नूं सलाहिया गया, सन्मानिया गया। कहिंदे ने जद कोई पुरुष बंदगी करदियां करदियां पूर्ण पुरख बनता है, तो उस दे अंदर स्त्री दी दया ते कोमलता प्रगट हो जांदी है, उस दे बोलां दे च भी स्त्री भाव आ जांदा है, जैसी कबीर ते गुरु नानक दे बड़े बोल स्त्री भाव दे ने। मोरी रुण झुण लाया भैणे सावन आया, तेरे मुंद कटारे जेवड़ा तिन लोभी लोभ लुभाया। ए बोल गुरु नानक दे। भगत कबीर कहंदे ने कियो सिंगार मिलन के ताएं,
हर न मिले।

0: हे जगजीवन गुसाई, हर मेरो फिर हों हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहोरिया। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर ज्ञान पैदा हो जाए, पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर भक्ति पैदा हो जाए, भावना पैदा हो जाए। पूर्ण हो जाती है स्त्री जद उसके अंदर भी अपनी सुरक्षा लई सूरबीरता पैदा हो जाए, और पूर्ण हो जाता है पुरुष जद उसके अंदर सहनशीलता जो है पैदा हो जाए। दोहां दी मंजिल एक है, दोहां दा मार्ग एक है, इस वास्ते दोवें हमराई ने, अगे पिछे नहीं ने, बराबर जो है चलन वाले ने, बराबर हकूक रखण वाले ने।
1: पुरख में नार, नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे ए बोल, पुरुष दे अंदर नारी है और नारी दे अंदर पुरुष है। कायनात ते निगाह मारिए ते सारी कायनात ए कुदरत नर ते मदीन विच वंडी हुई है। पशुआं नू लईए, पक्षियां नू लईए, बनस्पति तक नर और मदीन विच वंडी पई है। मनुखी दुनिया इतिहास तौर ते सूक्ष्म जगत नू देखिए, अस्तूल जगत नू देखिए, कुछ नर है कुछ मदीन है। मिडिल ईस्ट ते जिहड़े धर्म पैदा होए, इस्लाम, ईसाइयत, यहूदी, पारसी, ऐसा मनदे ने कि पुरुष दी पसली नू तराश के औरत दा जहूर आलम होया, स्त्री दा जन्म होया। कुछ भी होवे, चाहे स्त्री दे सीने तो पुरुष पैदा होया, चाहे पुरुष दे सीने तो स्त्री पैदा हुई है, लेकिन इतनी गल ते आद रूप दे च कबूल करनी पएगी कि दोहां दा वजूद एक है, एक दे च ए दो ने और दोहां दे च ए एक है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस गुत्थी नूं बहुत सोहणे ढंग नाल सुलझाया है। पुरख में नार, नार में पुरखा, बूझो ब्रह्म ज्ञानी। ए ब्रह्म ज्ञानियो, एक गल नू समझो, जानो, पुरुष दे अंदर ही नारी है, नारी दे अंदर पुरुष है। दोहां दा वजूद दोहां करके है, इस वास्ते एक दे अंदर ये दोवें मौजूद ने। स्त्री दे अंदर पुरुष मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, और पुरुष दे अंदर स्त्री मौजूद है, अस्थूल रूप दे च भी, सूक्ष्म रूप दे च भी, तन दे च भी और मन दे च भी। पुरुष इस वास्ते पुरुष हो सके है, ये 60% पुरुष है, 40% इस दे च मादा है, नारी है। नारी इस वास्ते नारी हो सकी है, ये 60% स्त्री है, पर 40% इस देश पुरुष है। साडे देश ने नारी नू अर्ध अंग आख्या है। एक गल वखरी है कि कहण दा लब्बो लै जा अर्थ समय दे नाल बदले, नारी पुरुष दा अर्ध अंग है, भाव पुरुष इस दे अंदर अधूरा है। अगर ऐसा है तो पुरुष नारी दा अर्ध अंग है, भाव इसके अंदर नारी अधूरी है। कुदरत अधूरा कुछ भी रहना रहने देना नहीं चाहती, संपूर्ण करके ही कुदरत सुख मान दी है। परमात्मा का नाम है पूर्ण। कायनात विच सब कुछ पूर्णता की तलाश दे चाहे, और पूर्ण होना चाहता है। जिंदगी का लक्ष्य पूर्ण होना है। तो अधूरी नारी जो पुरुष दे अंदर है संपूर्ण होना चाहती है, और अधूरा पुरुष जो नारी दे अंदर है संपूर्ण होना चाहता है। यही कारण है मनोविज्ञानिक भी इस नाल सहमत ने कि पुरुष दे अंदर नारी दी कशिश है और नारी दे अंदर पुरुष दी कशिश है। ये विपरीत तो प्रभावत ने, हम जिन्स तो प्रभावत ने। उसका मूल कारण पुरुष अपने तल ते पूरा पुरुष है, उसके अंदर अधूरी नारी है। नारी अपने तल ते पूर्ण नारी है, पर पुरुष दे तल ते अधूरी है। मां बाप तो ये शरीर आया है, दोहां दी अंश शरीर दे मौजूद है। अस्थूल रूप नो संपूर्ण करन दा जो ढंग मनुखी दुनिया ने अपनाया, उस दा नाम आनंद कारज विवाह निकाह आदिक प्रचलित होए। मैरिज दा जन्म होया, निकाह दा जन्म होया, आनंद कारज विवाह प्रथा जो है चली। एति सी सूक्ष्म शरीर दी पूर्ति, एति सी अस्थूल जगत दी पूर्ति। अस्थूल शरीर नो अस्थूल शरीर दा मिलन हो गया, पुरुष नो नारी मिल गई, नारी नो पुरुष, और पशुओं दी दुनिया च, पक्षियों दी दुनिया च, कीड़े मकोड़ियां दी दुनिया च, वो अपने ढंग नाल इस जरूरत नो पूरा करते ने। लेकिन सूक्ष्म तल भी है, नारी दा हिरदा भी है, पुरुष दा हिरदा भी है। स्वाभाविक तल ते देखिए कशिश विपरीत दी है। देवी गुणा नु लईए ए भी नर ते मदीन दे च वंडे पैण है। जे भक्ति नारी है तो ज्ञान पुरुष है। गुरबाणी ने ज्ञान नु पुरुष आख्या है, भक्ति नु नारी आख्या है। निज भक्ति सीलवंती नार, रूप अनूप पूरी आचार, जिचर वसी पिता के साथ, तिचर कंद फो फिरे उदास, कर सेवा सतपुरख मनाया, गुरआणी घर में ता सर्व सुख पाया। तो भक्ति नो नारी आख्या है। ज्ञान राव जब सेजे आवे तो नानक भोग करे, ज्ञान नो राव आख्या है, पुरुष आख्या है। अगर गौर नाल देखिए तो तर्क प्रधान है पुरुष दे अंदर, भाव प्रधान है, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है स्त्री दे अंदर। मन दा टिकाओ भाव नाल होंदा है, मन नु सूझबूझ ज्ञान नाल मिलदी है, तर्क नाल मिलदी है। तर्क स्त्री दे अंदर अधूरी है, पुरुष अधूरा है। भावना पुरुष दे अंदर अधूरी है, स्त्री अधूरी है। अस्थूल जगत ते जद ए अधूरे ने, नारी दे अंदर पुरुष, पुरुष दे अंदर नारी, तो सूक्ष्म दुनिया भी अधूरी है। या इंज कह लो, ज्ञान तो हीणा हिरदा है नारी दा, भक्ति तो हीणा हिरदा है पुरुष दा। पुरुष दे अंदर अगर भावना है, भक्ति है, तो अधूरी। स्त्री दे अंदर अगर ज्ञान है, तर्क है, तो अधूरा। जिथे अस्थूल जगत संपूर्ण होने लई तड़पदा है, उत्थे सूक्ष्म दुनिया भी अपने तल ते बहबल आउंदी है। कल्ली स्त्री, इकल्ला पुरुष संसार नहीं चला सकेगा। परिवार दा चलना ही संसार दा चलना है। अगर स्त्री पुरुष नो अलग कर देइए, परिवार अलग हो गया, एक दिन संसार अलग हो जाएगा। इस वास्ते स्त्री दे या पुरुष दे त्याग दे उते जिहड़े धर्म खड़े सन, वो कोई पायदार नहीं सन, ज्यादा चल भी नहीं सके और उन्हां नाल ज्यादा जुड़ भी नहीं सके। वो समूहक दा धर्म नहीं सी, सारियां दा धर्म नहीं सी, वो कुछ लोगां दा हो सकदा है। जैसे महात्मा बुद्ध ते स्वामी महावीर त्याग ते खड़े ने, ये सारियां दा धर्म नहीं हो सकदा। सारे ही त्याग कर देने स्त्री दा, और स्त्री त्याग कर दे पुरुष दा, तो परिवार खत्म हो। ते जद परिवार खत्म होया है तो संसार कितने दिन तक चलेगा, इस समाज कितने दिन तक चलेगा, आखिर ये वक्ती खेट सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो प्रकृति संसार नु चलाए मान रखना चाहती है, ये ताई चल सकेगा परिवार चलन। परिवार चल रहा है तो संसार चलेगा, और परिवार चल रहा है स्त्री ते पुरुष नाल। पति पत्नी दे सुमेल तो नानके दादके सहुरे जन्म लेंदे ने। रिश्तियां दी ये तीन प्रणालियां दा केंद्र पति ते पत्नी ने, ये रिश्ता टूट जाए ना नानके ना दादके ना सहुरे, तो ये परिवारिक जीवन संसारिक जीवन स्त्री ते पुरुष दे सुमेल तो चलता है। स्त्री दे अंदर जो स्थूल तल ते अधूरा पुरुष है, विवाह दे नाल उसकी संपूर्णता हो जाती है, और पुरुष दे अंदर जो अधूरी स्त्री अस्थूल तल ते निकाह विवाह आनंद कारज इसनु संपूर्ण कर देंदा है, लेकिन सूक्ष्म दुनिया अधूरी रहती है। भावना ते है, श्रद्धा ते है स्त्री दे अंदर, लेकिन तर्क नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान तो बिना ते भावना अंधी होंदी है, ज्ञान तो बिना ते श्रद्धा अंधी होंदी है, और श्रद्धा तो बिना ज्ञान लंगड़ा होंदा है। इंज कह लो, पुरुष दा ज्ञान परमात्मा तक पहुंचण दे असमर्थ है, क्योंकि भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, लंगड़ा है। और स्त्री दी भावना भटकेगी, श्रद्धा भटकेगी, क्यों? ज्ञानहीणी है, तर्कहीणी है। असी देखते हैं बहुता पखंड अगर पूजिया जा रहा है तो स्त्री जगत देच, अगर सच भी ठुकराया जा रहा है तो पुरुष जगत देच, क्योंकि तर्क है, भाव नहीं है। और स्त्री को भाव है, तर्क नहीं है। एक गाथा है कि एक कस्बे नू पिंड नू अग लगी, सारे ते अपनी जान बचा के कस्बे चो निकल गए, लेकिन आमने सामने दो रहण वाले ना निकल सके। एक दे कोल पैर नहीं सन, एक दे कोल अखा नहीं सन, एक अंधा सी, एक पिंगला सी। इस तरह ये दोवें विचारे अग दे चो निकलन दे च असमर्थ रह गए। अंधा टंटोल टटोल के बुए तक पहुंचे है, और यही हाल पिंगले दासी बुए ते बैठा है। पर इस पिंगले ने अखा नाल वेखे है अंधे नो, और आवाज मार के आख्या, मित्रा मैं तेरे पैरां दा इस्तेमाल कर लेना, तू मेरी अखां दी वरतों कर ले, आपां इस अग तो निकल सकते हैं। कहानी है, अंधे दी पिट ते ये पिंगला बैठ गया है, रस्ता दस्ता गया, और रस्ते ते अंधा चलदा गया। इस तरह दोवें अग दे चों निकलन दे सफल होए। हकीकत है, संसार दी अगन दुखां दे चों निकलन दे च स्त्री पुरुष दा सही सुमेल अंधे ते लंगड़े दा मेल है, और दोवें निकल सकदे ने। अंधे नू पैर मिल जाणगे, और लंगड़े नू पैर मिल जाणगे, अंधे नू अखां मिल जाणगियां। हकीकत है, ये सच्चाई है। पैरां दी सारी गति किसे हद तक दोहां दे सुमेल तो होवेगी, और सारा देखना दोहां दे सुमेल तो होवेगा, रुक जाएगा परिवार तो संसार रुक जाएगा। ये दोवें रुक गए तो जगत रुक जाएगा। धार्मिक दुनिया रुक जाएगी अगर भावना ना रही, ज्ञान ना रहा। परिवार टूट जाएगा अगर स्त्री ना रही, पुरुष ना रहा। जिथे स्वभावक एक गुण है स्त्री दे अंदर, भावना प्रधान है, श्रद्धा प्रधान है, भावना मन नू टिकाण विच बड़ी समर्थ है, प्रबल है। यही कारण है कि घर दी चार दीवारी विच सारी जिंदगी स्त्री बड़ी खुशी नाल कट लेंदी है, क्योंकि टिकाओ है। भावना मन नू टिका के रख दी है, श्रद्धा मन नू टिका के रख दी है। और एक पुरुष एक दिन भी पूरा घर विच नहीं बैठ सकेगा, तर्क उदे पैरां नू गति देंदा है, भटकांदा है। चल इस वास्ते कहंदे ने अगर तर्क ना होवे तो बाहर दी दुनिया खत्म होवेगी, अगर भाव ना होवे तो घर दी दुनिया खत्म होवेगी। इस वास्ते स्त्री दे अंदर परिपूर्ण परमात्मा ने भावना प्रधान रखी है, श्रद्धा प्रधान रखी है। ये अपने कोल बड़ा भावक हिरदा रख दी है, पर पुरुष अपने कोल बड़ी तर्कशील बुद्ध रखता है। प्रबल भावना करके घर वसिया रहिंदा है, और प्रबल तर्क करके बाहर दी दुनिया फैल दी जांदी है, वद्दी जांदी है। लेकिन कुछ स्वभावक औगुण भी है स्त्री दे अंदर पुरुष दे अंदर। स्त्री दे अंदर स्वभावक जो औगुण है बड़ी प्रबल ईर्ष्या है। स्त्री दी स्त्री नाल बहुत प्रबल ईर्ष्या है, और इस ईर्ष्या करके ईर्ष्या करके जेलसी करके कई दफा घर नरक बनता है। देखण दिया है बहुते घर मर्दां करके नहीं टूटते, स्त्री दी ईर्ष्या करके जो है टूट जाते ने। स्त्री दा स्त्री नू बर्दाश्त करना बड़ा कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। सस ते नूह देराणी ते जिठाणी परजाई ते निनाहण मुश्किल है एक दूसरे नू सहन करन बर्दाश्त करन। यूरोप दी दुनिया ते सारे परिवार टूट गए ने, और एशिया दे बहुते परिवार कल कलेश दे दल दल दे फसे हुए ने स्त्री दी ईर्ष्या करके। पर पुरुष दा तर्क फैलाओ इस दे अंदर बड़े प्रबल हंकार नू जन्म देंदा है। तो पुरुष दा जो बुनियादी अवगुण है अहंकारी है, बहुत अहंकारी है। प्रबल अहंकार करके इसका भी घर विच कलेश मचाना स्वभाविक हो जाता है। हंकार ते जेलसी इसका टकराव किसे वक्त स्त्री ते पुरुष का टकराव हो जाता है, और दूरिया नू जो है जन्म देता है। लेकिन फिर भी अगर दोवें सत्संगी हवन, सतपुरुषां तो प्रेरणा लैण वाले हवन, तो फिर दोहें अपने गुणां दी सही वरतों करके परिवार नू स्वर्ग बना सकदे ने, संसार नू स्वर्ग बना सकदे ने। प्राचीन जमाने तो लैके हुण तक धार्मिक जगत देच शायद कुछ इना ही कमजोरियां करके स्त्री निंदनी रही है, और नरक दी द्वारी कहंदे रहे ने साडे देश ते आदर्श इते नरक द्वारी है। इस वास्ते सनातन मत देश ते किसे हद तक इस नु शूद्र मनिया गया है, ये जनेऊ पहनण दा अधिकार नहीं रखती, इनू वेद पाठ करन दा अधिकार भी नहीं दिता, और इसनु ऐसा मन लिया है कि बुद्धहीन है। शूदर है। हैरानगी दी गल है, महाकवि तुलसी भी इसनू पशुआं दी श्रेणी विच खड़ा करदे ने। ढोर गवार शूदर पशु नारी ए पांचों ताड़न हितकारी। जैसे शूदर नू पशु नू ताड़दे रहिए तां ठीक रहिंदे ने, इस तरह शूदर नू ते पशु नू जिवें ताड़दे आ उसे तरह इस्त्री नू ताड़दे रहिए तां ओह ठीक रहिंदी है। पशुआं दी दुनिया विच खड़ा कीता इस महान चिंतक ने, इस महान कवि ने, साडे देश दे प्राचीन ऋषियां ने, मुनियां ने, ए घोर नरक दी दुआरी है। भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु घर दे वेद व्यास फरमान करदे ने, लोक रीत गुण ज्ञान विच अर्ध शरीरी मोख द्वारी। इते मोक्ष द्वारी है, इस तो बिना मुक्ति किथे। हैरानगी, मोक्ष द्वारी किथे नरक द्वारी, किधरे मोक्ष द्वारी। जिन्ह ने नरक द्वारी आख्या उन्हां कोल सब तो वड्डा तर्क ए सी कि इस्त्री नूं असी किधरे भी अवतारी दुनिया विच नहीं देखते। अज तक जितने अवतार आए करीबन करीबन वो पुरुष तन धारण करके आए। जे अपने देश दे प्राचीन सिरमोहर अवतारी पुरुषां नूं देखिए, विष्णु ने, श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, धन गुरु नानक देव जी महाराज ने, बड़े बड़े भक्त ने, ऋषि ने, मुनि ने, पुरुष रूप दे ने। इस्त्रियां दे कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार भी देखण नूं नहीं मिली। साहित्य तरह तरह की कला दे जन्मदाते भी पुरुष, संगतराश, चित्रकार, कवि, दार्शनिक, फिलोसफर, चोटी दे साइंटिस्ट, चोटी दे राजनेता, हर दुनिया दे हर पासे असी पुरुष नूं अग्रसर देखदे हां, अग्गे देखदे हां। तो पुराने लोगां कोल ए तर्क सी कहण वास्ते कि पशु दा मतलब है पछड़िया होया, तो चूंकि स्त्री भी पछड़ी हुई है, पशु दा मतलब है पछड़िया होया, पुरुष तो पछड़ी हुई है, पुरुष दे पिछे है। इस वास्ते आदि काल तो ऐसा भी रहा कि स्त्री पुरुष दे पिछे ही चले, क्योंकि ये पछड़ी हुई है, हर तल ते पछड़ी हुई है, हर पक्ष ते पछड़ी हुई है, पीछे जो है चले। ऐसा भी जमाना लंघे है, दौर लंघे है, जिथे स्त्री केवल धन सी, घरेलू साजो समान दी तरह, वस्तुआं दी तरह स्त्री भी एक वस्तु सी, जैसे कोई धनवान गिणिया जांदा सी, इस दे कोल हाथी ज्यादा ने, घोड़े ज्यादा ने, मकान ज्यादा ने, जमीन ज्यादा है, सोना चांदी ज्यादा है, तो धनवाना दी गिनती दे च ओ भी आउंदा सी, इस दे कुल इस्त्रियां ज्यादा ने, इहदे कुल 400 इस्त्रियां ने, इहदे कुल 600 इस्त्रियां ने, दूर सतयुग त्रेते दी ते गल की करने। इस दौर दे च भी ऐसे नवाब महाराजे होए ने, 400-400 राणियां और 600-600 बेगमा रखण वाले मौजूद, और इन्हां दी आम जो है चर्चा एक धन सी। किसे हद तक ऐसा दौर भी लंघे है चीन देच, स्त्री नूं पुरुष ने मार दिता है तो ये जुर्म भी नहीं समझिया जांदा सी। जैसे कोई अपने सोने नूं चिकड़ दे सुट देवे, जैसे कोई अपने घर नूं आप ही आग लावे, कोई अपनी धन संपदा नूं साड़ देवे, तो अपना धन सी आप फूके है, कोई जुर्म नहीं। स्त्री एक धन सी खत्म कर देता है, कोई जुर्म नहीं। ऐसा दौर भी लंघे है, और ऐसी भी धारणावां रही ने कि स्त्री दे अंदर आत्मा ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। गर्स के आदि काल तो स्त्री नूं पशु कहण दा, पछड़े होया कहण दा तर्कशील लोगां कोल जिहड़ा तर्क सी ओ ए है कि एक कोई बहुत वड्डी ग्रंथकार नहीं बन सके। अवतारी दुनिया दे च नहीं दिखाई देंदी और ना ही कोई चोटी दी विज्ञान कवित्री। संग तराशी संगीत कला दी दुनिया दे च, ज्ञान दी दुनिया दे च, सुधार दी दुनिया दे च, अवतार दी दुनिया दे च पुरुष ही पुरुष अगे दिखाई दे रहे ने। इस वास्ते स्त्री दे पछड़े होण दा ये सब तो वड्डा सबूत है। ये पछड़ी हुई है, ये पछड़ी हुई है। आया धन गुरु नानक देव जी महाराज दा जमाना, आपने इस तर्क नो बड़े सोहने ढंग नाल जुठलाया है, परे सुटिया है, ये गलत है, ये सही नहीं है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा। बड़ी क्रांतिकारी पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी। आप कह रहे ने स्त्री किस तरह अवतार बन दी, उसका समा उसकी शक्ति ते अवतार नु जन्म देने दे च लग गई। वो आप किस तरह ग्रंथकार बन गई, उसका समा उसकी शक्ति ते किसी ग्रंथकार नु जन्म देने दे च लग गई। जैसे हर पुरुष अवतार नहीं आउंदा, ग्रंथकार नहीं आउंदा, साइंटिस्ट नहीं आउंदा, कलाकार नहीं आउंदा, हर स्त्री कलाकार नो, अवतार नो, संत नो जन्म देने वाली भी नहीं आउंदी। जो किसे संत नो जन्म दे सकी है वाकई उसकी कुख ऐसी ही सी, महान सी। जो किसे अवतार नो जन्म दे सकी है और अवतार ने किसे ऐसी स्त्री की कुख चुनी है तो जितना अवतार पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना संत पूजनीक है उसकी मां उतनी ही पूजनीक है, जितना कोई ग्रंथकार चित्रकार या वैज्ञानिक पूजनीक है उतनी ही उसनु जो है जन्म देने वाली जो है पूजनीक है। क्योंकि उसका समा उसकी शक्ति ग्रंथकार नु जो है जन्म देने दे जो है लग गई। बाबा फरीद कहंदे ने तिन धन जने दी माओ आए सफल से, धनता दे योग है ओ मां। जिसने किसे ऐसे पुरुष नु जन्म दिता है जिसने अपनी जीवन यात्रा नु सफल कीता है, जो फकीर सी, जो संत सी, जो अवतार सी, इसनु जन्म दिता है, पूजन योग है ओ मां, धनता दे योग है ओ मां। तो धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस तरह स्त्री नूं पुरुष दे बराबर ते खड़ा कर दिता, अवतार दी बराबरी ते अवतार दी मां नूं खड़ा कीता, ग्रंथकार दी बराबरी ते ग्रंथकार दी मां नूं खड़ा कीता। और ऐलानिया के आ सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजान। यहूदियां दे धार्मिक मंदिर स्त्री लई बंद ने, इस्लाम दियां मस्जिदां स्त्री लई बंद ने, वेद पाठ स्त्री नहीं कर सकती, जनेऊ स्त्री जो है नहीं पहन सकती। और जैन धर्म ने ते इत्थे तक कह दिता स्त्री शरीर देच, स्त्री दे चोले देच मुक्ति नहीं हो सकती। स्त्री नो एक जन्म ते पुरुष दा लेके ही मोक्ष गति नो प्राप्त करना होवेगा। स्त्री साधना करे, जप तप करे, उसका अगला जन्म पुरुष दा होवेगा, फिर साधना करे तो साधना दी सफलता नाल उसनु मुक्ति मिलेगी। स्त्री चोले ते मुक्ति ही नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, स्त्री पुरुष नालों बहुत छेती मुक्त हो सकती है, क्योंकि इस दे अंदर भावना प्रधान है और इस दी भावना प्रधान अवतारा नु, ग्रंथकारा नु, भक्ता नु जन्म देंदी है। ए महान है, ए पूजनीक है। सो क्यों मंदा आखिए जित जम्मे राजा।
2: उच्चारण करो जी वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। भगत धन्ना जी का जन्म पिंड तुआन जिला टांक ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੈਪੁਰ ਤੋਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਜੈਪੁਰ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਟਾਂਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਂਗ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ ਤੁਆਨ ਹੈ। ਐਦਕੀ ਸਬੱਬ ਬਣਿਆ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਉਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਔਤ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਕਈ ਬਿੱਘੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅੱਜ ਵੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਖੂਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਖੂਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਭਗਤ ਉਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਕਾਰਜ ਅਰਾਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲ ਸਾਂ ਸੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਉਹ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀਖਿਆ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਲਈ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣਤੀ ਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਗ ਆਸਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਗ ਆਸਾ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਸਰਲੇਖ ਹੈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਨਕ ਪਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਸਦਾ ਸਰਲੇਖ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਭਰਮਤ ਫਿਰਤ ਬਹੁ ਜਨਮ ਬਿਲਾਨੇ, ਤਨ ਮਨ ਧੰਨ ਹੀ ਧੀਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬਾਣੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਆਪਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿੱਜ ਸਵਰੂਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਵਰਨ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਨੀਵਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਕੇਵਲ ਨੀਵਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸਮਰਪਿਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਲੇ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚ ਇਹ ਦਾਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ पर गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच भगत धन्ना जी परमात्मा दी भगती किवें कर लगे उन्हां दा पवित्र शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब विच कि भगत धन्ना जी नूं करनी कमाणी वाले महापुरखां दे जीवन बारे पता लगा। सब तो पहला भगत नामदेव जी उन्हां दे पवित्र जीवन संबंधी ए समाचार मिलिया कि उच्ची जात वेले उन्हूं अद्धी कौडी दा छिंबा कहिंदे ने। गल ध्यान नाल सुनियो, कोई शब्द गुरु ग्रंथ साहिब तो बाहर निकल के नहीं। अद्धी कौडी दा छिपा कहिंदे ने, पर अज उस दा अंदर परमात्मा दे नाम च शब्द विच इन्ना कु लीन होया कि गुरु ने अद्धी कौडी दे छिंबे नूं अज लखां दा बना दिता है। उहदी अरदास मालक दे दर ते सुनी गई। दूसरा वचन कि भगत कबीर साहब जी नूं बनारस दी धरती ते स्वर्ण जाति वाले जुलाह कह के पुकारदे ने। जदों उह सच दी गल वी करदे ने, अखौती उच्ची जात वाले उहदी सच दी आवाज नूं वी दबाण दा यतन करदे, पर उस महापुरख बारे दस्या गया कि उहनां ने अपनी किरत जरूर कीती पर तमे ते लालच दी बिरती नूं त्याग के केवल परमात्मा नूं गाया, जिस नूं लोक जुलाह कहिंदे सन। तन गुरु अर्जुन देव कहिंदे ने धन्ना जी नूं दस्या गया कि उह गुणा दी खाण बन गए कबीर जी। तीसरा वचन कि भगत रविदास जी ने उहनां दी बिरादरी दे लोक लोकां दे घरां विच्चों मरे हुए पशुआं नूं ढोंदे ने, पशुआं दा चमड़ा उतारिया जांदा है। पर सतगुरु दी बाणी विच गुरु अर्जुन देव ने कहा, भाई संसार दे लोगो कि देखो कि जिहड़ा घर घर दे विच जा के मरे हुए पशुआं दा चमड़ा उतारन दा काम करदा है, उहदे खिरदे विच परमात्मा दी भगती वस गई ते उहनां ने साध संगत विचों परमात्मा दे दीदार नूं पाया। चौथा वचन है कि उह भगत सहन जी जिन्हां नूं लोक नाई शब्द वरदे सन। मेरी बेनती ध्यान नाल सुनियो, मैं किसे जात बिरादरी नूं केंद्रित रख के नहीं, पर जो कुछ गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच है उह मैं जरूर सांझा करना चाहुंदा हां कि उहनां नूं लै लोक बुत्तियां करन वाला नाई कहिंदे ने, पर हजूर ने कहा देखो कि अज उह महापुरख परमात्मा दी भगती करदिआं करदिआं श्रोमणी भगतां दे विच उहदी शमूलियत हो गई। इस वचन नूं ध्यान नाल पढ़िओ। नामदेव जी लई शब्द छिंबा वरत्या गया, कबीर साहिब लई जुलाह वरत्या गया, भगत रविदास जी लई शब्द चमार वरत्या गया, सैन जी लई भगत शब्द नाई वरत्या गया। पर सच एवे कि एक हल वाण वाला जिमीदार जिहदे लई शब्द गुरु अर्जुन देव जी ने जाटरो वरत्या है, एक जाट उस दे मन विच इन्हां महापुरखां दे जीवन दीआं साखियां, इन्हां दी परमात्मा विच अभेदता, इन्हां दे अंदर परमात्मा दी बख्शिश नूं देख के एक हल वाण वाला जिमीदार परमात्मा दी भगती भी जुड़िया। उहने इन्नी भावना नाल परमात्मा दी भगती कीती, तन गुरु अर्जुन देव महाराज कहिंदे ने उहने परमात्मा दे प्रतख दर्शन कीते ते जो कुछ उन्हें अपनी जबान तो कहा परमात्मा ने उस भगत दे हर कार्य नूं सिरे ला दिता। यह पवित्र शब्द है कि गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम देओ मन लीना, आड़ दाम को छिपरो होयो लाखीना। एते शब्द छिपरो वरत्या है कि छिंबा, गोबिंद गोबिंद गोबिंद संग नाम देओ मन लीना, आड़ दाम को छिपरो होयो लाखीना, बुनना तन्ना त्याग कै प्रीत चरण कबीरा। ते महाराज कहने नीच कुला जोलारा पयो गुणी गखीरा, रविदास ढवंता टोर नीत तिन त्यागी माया, प्रगट होवा साध संग हर दर्शन पाया। सैन नाई बुतकारिया ओ घर घर सुनिया, हिरदय वस्या पार ब्रह्म भगता मैं गनिया। ए चार महापुरखां दा जीवन सुन के ते इत्थे एक दास अर्ज करनी चाहेगा। तुसी बाणी पढ़न वाले समझन वाले बैठे हो ते भाई साहिब जी दी अंदर दी एक सिख है कि जिन्हां दी बाणी असीं गुरु ग्रंथ साहिब च पढ़ने हां उन्हां भगतां महापुरखां दा जीवन ते उन्हां दी रचना विचों कोई संगत नाल सांझ पाई जाए। मैं कई बार सोचना क्योंकि सानू जो कुछ शुरू तो सुनाया गया असीं उन्हूं अपने दिमाग विच फीड कर लिया, गुरु ग्रंथ साहिब नूं पढ़न दा यतन ना कीता। क्योंकि अज जो मैं बोलांगा आप सुनोगे, जी सदके सुनो, पर एक बेनती है कोई भी बोले खुद गुरु ग्रंथ साहिब दे नाल आप सांझ पाओ ते जदों गुरु ग्रंथ साहिब दा पाठ करोगे सच एवे के गुरु ग्रंथ साहिब दा शब्द साडे जीवन दी अगवाई करे, सानू उस खजाने दी जानकारी मिलेगी। हुण अज तक साडे नेड़े सुल्तानपुर है, शायद दास ने अर्ज पिछले दिनी भी इत्थे समागम सी कीर्तन दरबार उत्थे कीती होवे, अज तक मैं बाबा कालू जी दी याद विच कदी किसे प्रोग्राम नू अटेंड नहीं कीता। हो सकदा कीर्तनीय गुरसिख बैठे ने, शायद इन्हां ने भी ना कीता होवे। बाबा कालू जी दी यादगार किते ज्यादा नहीं मिलदी, उन्हां दी याद विच किते गुरमत समागम नहीं देखे। कारण इक्को, क्योंकि साडे दिमाग विच इक्को गल पा दित्ती गई, वह झिड़कदे रहे, वह मारदे रहे, उन्हां नूं समझ ना पई। पर एक मैं बेनती करांगा, वह पिता ने, पिता अपने पुत्र दे जीवन नूं चाहुंदा है अपनी बिरती नाल कि बहुत तरक्की करे, पर सच एवे कि गुरु ग्रंथ साहिब दी शब्द दी रोशनी च देखियो जिथे धरती नूं धन किया गया, मां नूं धन किया गया, कुल नूं धन किया गया, उत्थे गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विच गुरु दे पिता नूं भी नमस्कार कीती गई। गुरु ग्रंथ साहिब इक बचन आउंदा है कि धन धन पिता। हुण की आपां बाबा कालू साहिब जी नूं धन धन नहीं कहांगे, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माहे। ये चार शब्द ने कि पिता धन, कुल धन, मां धन, ते चौथा शब्द फिर क्या गया गुरु नूं धन। हुण ये जिहड़ा शब्द आपां पढ़ने हां कि गुरु ग्रंथ साहिब विच तां बाणी परमानंद दी दर्ज है, पर धन्ना जी नूं इह परमानंद बारे क्यों ना गुरु अर्जुन देव ने विच अंकित कीता। बाणी भगत रामानंद जी दी भी दर्ज है, पर चारां भगतां नूं विशेष करके हजूर ने अपने शब्द विच उदाहरण वजो लिया, परमानंद, रामानंद, भगत पीपा जी, भगत बेणी जी, भगत तरलोचन जी, बाबा फरीद साहब जी, उन्हां दे भी अमृत बचन दर्ज ने। पर चार भगत क्यों चुने गए, नामदेव जी, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी, भगत सैन जी। दरअसल मेरा मन एक गल कहिंदा है कि धन गुरु अर्जुन देव जी का यह शब्द दर्ज करन दा इक्को कारण सी कि एक जिमीदारा करन वाला उन्हूं यह गल दसी गई कि जिन्हां नूं पिंडां दे लोक नीच कहिंदे ने, देख उन्हां उपर परमात्मा दी इन्नी कृपा होई, वो भगती कर करके परमात्मा विच अपेद हो गए, ते किन्ने इन्हां दे जीवन नूं सुन के एक हल वाण वाले ने प्रतक परमात्मा दे दीदार पा ले। रामानंद, परमानंद, इहदा मतलब यह नहीं कि उन्हां दा जीवन जां उन्हां दी रचना विच कोई अंतर है, क्योंकि उन्हां संबंधी यह मनौत है कि वह स्वर्ण जाति विचों संबंधित ने, पर इन्हां भगतां ने एक क्रांति लियांदी कि जिन्हां नूं लोक कहिंदे सन नीवीं जात दे, उन्हां ने सच एवे कि समाज दियां नफरत दियां ठोकरां खांदिया होया भी परिपूर्ण परमात्मा नूं अपने हिरदे विच प्रगट कर लिया है। कबीर साहिब दा एक सलोक है, वह कहिंदे ने सच एवे कि लोक मेरी जात दा नाम लैके मजाक उड़ांदे, मैं शहर विच लंघना, पिंड विच लंघना, ते उच्ची जात वाले लोग मेरा नाम लेके पुकार देने, ते देखो महापुरखां ने बचन दर्ज कीते, पर कहिंदे परमात्मा मैं इस जात तो कुर्बान जाना, जे ए ठोकरां ना मार दे ते मेरे अंदर तेरी भगती दा एहसास किवें पैदा होना सी। उन्हां दे अमृत बोल ने कबीर, मेरी जात को सब को हसने खार, हर कोई मेरी जात हंसदा है, मजाक करदा है। कबीर, मेरी जात को सबको हंसने खार, बलकारी इस जात को जय जपियो, سر جگار کہ میں قربان کا یہ دیتا ہوں کہ جس ذات وچ رہ کے منو پرماتما دی بھگتی مل گئی. صرف میری بینتی سی کہ چار بھگتاں دا جیون سن کے وہ مہاپرخ بھگتی کر لگا. اسی شبد پڑھ لینے ہاں کیونکہ میں لڑی جوڑنا چاہنا. پہلا شبد کہ کہ پرمت فرت بو جنم بلانے تن من تانی تیرے. اے سارے شبد وچ بھگت جی نے کتے ٹھاکر پوجا دا ذکر نہیں کیتا. اس شبد دیاں اخیرلیاں تکاں نے کہ تن تن پایا ترنی تر مل جن سنت سمانے. آ کہ تنے نے ترتی دے سہارے پرماتما نو پایا. تے دیکھو نہ شبد یہ نہیں لکھیا کہ کسے پتھر نو پوج کے وہ نہ شبد ورتیا کہ مل جن سنت سمانے. آ پرماتما دی بھگتی کرن والے مہاپرکھاں دی سنگت کر کے. ہن اس تو بعد جیڑی اگلا شبد کہ محلہ پنجواں گوبند گوبند گوبند سنگ نام دیو من لینا. آڈ دام کو چھیپرو ہوئے لاکھینا بننا تننا تیاگ کے پریت چرن کبیرا نیچ کلا جولارا پیو گنی گہیرا رویداس ونتا ٹور نی تن تیاگی مایا پرگٹ ہو وا سادھ سنگار درشن پایا. اے بید سن کے بید دا ارتھ سانو رکنا پے گا کہ انہیں آ بید آ سارے طریقے سنے. اس گھٹنا کرم نو سنیا انہاں نے تواریخ نو سنیا انہاں نے بھگتاں دے جیون نو پڑھیا سنیا. اے بد سن کے جاٹ رو اٹھ بھگتی لاگا تے مہاراج کہندے ملے پرتاک گسائیاں تنا وڈ پاگا. اے سن سنت جن جنہاں دی سوبد کر کے انہاں نے پایا. میں صرف انہاں دے شبداں نو اپنے نردارت سمے وچ سدھانتک جو پکھ ہے وہ عرض کرنی چاہاں گا. پہلی توک ہے گرو گرنتھ صاحب دے راگ آسا وچ بھگت جی دی کہ ہے پربھو ایس جیو آتما نو بھرم دیا بھٹک دیا پتا نہیں کنے کو جنم ہو گئے. پرمت فرت بہت جنم بلانے ایک دو نہیں بہت جنم ہو گئے نے پر اج بھی اس اندر نو سمجھ نہیں پئی. تن من تن نگی تیرے تین شبد دھیان دیا جی میں پہلی تک صرف لینی تے دوسرے دو شبدوں کی ویاخیا کرا. تن من تن نہیں تیرے نہ تن نے سدیو کال تیرے دا ارتے تیرج تیرج دا پاو ارتے ٹکنا. کہنے نہ تن نے ٹکنا نہ بندے دا من ٹکدا ہے تے نہ جڑا اے تن دے امار لائی بیٹھا ہے. سچ ایویں نہ تینا چیزاں وچوں کوئی چیز بھی بندے دے نال نبھن والی نہیں. بس انہاں نوں اسی تھوڑا جا وچار لیے. تن من تن نہیں تیرے. میں دو دو چار چار پرمان صرف ارج کراں گا بانی وچوں. دیکھو پہلی گل بھگت جی کہندے نے آ تن کیڑا تیرے اے کیڑا ٹکا وچ کھے. عام طور تے اسی شبد ورتنے آ کہ موت ویلے تن بنسدا کھے. نہیں بینتی کھے جنم تو شروع ہوندا ہے مرن تک اے دی پرکریا مکمل ہوندی کھے. اے تا سادے جوندے جی اپنا روپ بدلی جاندا کھے. جو اج میرے تن کول کھے اج تو 10 سال پہلا سروپ نہیں سی. جے رب زندگی دے گا تے اج تو 10 سال بعد اے چہرہ اس طرح دا نظر نہیں آئے گا کیونکہ تبدیلی ہے. اے ٹکن والا نہیں. انہیں ایستا ایستا انہوں شبد اے ورتی چینجیبل ہے. انہیں تبدیل ہونا ہے. تن آلوک اپنیاں تصویراں ہر جنم دن دہاڑے کھچ کے لاندے. تے میرا خیال جڑا 30-32 سال تو تصویراں لا رہا ہے نا انہوں ایک ایک تصویر سال بعد چنگی طرح دھیان نال کوک لینی چاہی دیئے کہ ہر سال میرے شریر دے وچ کوئی نہ کوئی تبدیلی آ رہی ہے. یہ چینج ہو رہا ہے. بابا فرید صاحب نے اس تبدیلی دے بارے ایک بچن کیا کہنے لگے دیکھ فرید کیول تیریاں اکھاں چ پانی نہیں کیول تیری زبان وچوں دند تیرے مکھ وچوں دند نہیں کیول تیرے شریر وچ جو پرماتما نے کیس داڑے روپ دیتے کلے اے تیرے کیساں دا رنگ کالے تو چٹیا نہیں ہویا. تے آ دن آ گئے نے دسمبر دے پوہ دا مکینا چڑھنا ہے. کہن لگے باہر کھیتاں وچ بگیچے وچ جتھے ات دی بر پیندی ہے چاتی مار کے دیکھ جیڑے پتے اج تو 3 مہینے پہلا ہرے کومل تے لوکاں دیاں اکھاں نوں پربھاوت کردے سن انہاں پتیاں دا رنگ وی پیلا پین لگ پیا. جے پتا ٹکیا نہیں ते तेरे तन दा की भरोसा, तेरा तो तन भी बनस्पति की तरह हर साल चेंज हुंदा जा रहा है, तन टिकदा नहीं। बाबा साहब का शब्द है कि रुत फिरी वन कंबिया, देखो तब्दीली है, तन मन धानी धीरे। मैं पहली तुक भगत धन्ना जी दी लई ते सच एवे, जे इकले भगत धन्ना जी दी एक एक तुक दी आपां गहराई भी जाइए ते मेरा ख्याल भावे पांच साल निरंतर कथा करदे रहो तां वी उहदा अंत नहीं पाया जा सकता। हुण आई शब्द कह तन मन तन नहीं धीरे, बाबा जी ने कहा रुत फिरी वन कंबिया पत झड़े चढ़ पाए, चारे कुंडा ढूंढियां रहन किथाऊ नाखे। तन भी तब्दीली की है, उत्थे शब्द है बाबा जी का एक और भगत फरीद साहब का, कहन लगे अखी देख पतीणियां तन मन तन नहीं धीरे, अखा वेखण वालियां पतलियां पै गई चेंज हो गई, अखी देख पतीणियां सुन सुन रीणे कन, सुनदिया सुनदिया कन भी एक दिन बोले हो गए। शाख पकंदी आईया कि जिवें रुख ते पत झड़ावे ते उहदे पत्तियां दा रंग तब्दील हो जांदा है। कहिंदे ने सच एवे कि जिहड़ियां शाखावां तेनूं मिलियां सन मना, देख अज तेरे इंद्रियां ते चमड़ी दा रंग भी तब्दील हो गया है। शाख पकंदी आईया होर करेंदी वन, इहनूं नैगेटिव अप्रोच नहीं, क्योंकि तुसीं सुगड़ सियाणे सरोते हो, साडा तन चेंज हो रहा है। भगत धन्ना जी पहली गल गुरु ग्रंथ साहिब च कहिंदे ने बंदिया इन्हां तिन्नां चीजां दा तेनूं मान कै, मन दा तन दा ते धन दा, मैं तेनूं दस देवां इह तिन्ने ही तेरे नहीं ते इन्हां तिन्नां ने तेरा साथ नहीं देना, इन्हां ने चेंज होना ही होना है। हां इत्थे इक नुकता होर, बंदा सोचदा मैं चेंज नहीं हो रहा पर वक्त उहनूं आहिस्ता आहिस्ता चेंज करदा है। एक बड़ी सोहनी घटना है बाबा फरीद साहब की, मैं दो बचन होर सांझे करने ने। पहली तुक मैं अर्ज कर लगा भगत धन्ना जी कहिंदे तन सदीव काल नहीं रहना। बाबा फरीद साहब का एक होर बचन है, इनू नैगेटिव अप्रोच बिल्कुल नहीं लैनी, क्योंकि असल च जिहड़ा बचपन है इहदा अपना सुभाग है, जवानी है इहदा अपना जोश का हड़ है, बुढ़ेपा है इहदा अपना तजर्बा है। आ जिहड़ी साडी जनरेशन गैप है ना, इहदा कारण ही कोवे कि जवानी कदी भी बुढ़ेपे की गल सुनने तैयार नहीं, पर जदों आप बुढ़ेपे विच आउंदा है ते उदो मां बाप कोल नहीं हुंदे, पर एक गल कहिंदा मेरे बजुर्ग सच कहिंदे सन उदो मैं समझिया नहीं, क्योंकि अपना तजर्बा करना चाहता है। बाबा साहब नूं पुछिए, उह कहिंदे ने इस करके तन नहीं टिकिया रहना कि इंसान चंगा भला घर बैठा है, सवास चलते पए ने, पर कहिंदे करिए की तब्दीली इन्नी आ गई। जिन्हां दंदां नूं लोक कहिंदे सन कि मोतियां दी कतार, मोतियां दी लाइन, मोतियां दी पाल, कहिंदे मोतियां वर्गे चमकदे हुए दंद अज मूंह विचों निकल गए। कहिंदे बंदा दुखी क्यों ना होवे कि जेड़े साथी बाद विच आए वह पहला चले गए, दंद जन्म तो बाद आए पर अजे बंदा जिउंदा पै, दंद पहले मूंह विचों निकल गए। महाराज कहना शुरू कर दिंदा भी बंदिया चेते रखिए तैयारी तेरी शुरू हो गई, भुरन लग पे शरीर, क्योंकि तन मन तन नहीं धीरे, तेरा तन भुरन लग पिया है, दंद निकल गए ते बंदा समझदा नहीं। अखां दी जोत चमकदी है, सच एवे ऐसता ऐसता अखां दी जोत मध्यम पै गई, कन्नां दी सरोत खत्म हो गई, इथों तक कि जेड़े पैर पहाड़ां दे शिखर ते चढ़दे सन अज ओ बंदा, बाबा साहब ने तां शब्द वरत्या दुनिया दे लोगो मेरे सराने वजू करन वाला पानी दा कुजड़ा गए, अज मेरे कोल इन्नी ताकत नहीं मैं उठ के पानी दा कुजा हत्थां नाल पकड़ के मैं वजू कर सका, समर्था नहीं, क्योंकि तन चेंजेबल है। बाबा साहब दे शब्द ने दो श्लोक कहन लगे उन्हां दे अमृत बचन ने, एक ता है बाबा साहब जी दे अमृत श्लोकां विचों चबण चलन रतन, तन मन तन नहीं तीरे। पहला तुक मैं लई पहला सिर्फ इको शब्द लिया तन, फिर मन, फिर तन, तिने चीजा स्थिर नहीं। बाबा फरीद साहब कहने चबन चलन रतन से सुनियर बह गए, खेड़े मुत्ती ढा तन नहीं तीरे, शरीर ने ढा मारी से जानी चल गए जानीदार ते प्यारे के जेड़े प्यारे अंग जेड़ी एनर्जी रब ने मैनू जन्म वेले दिती

कि माता तृप्ता जी जिथे बहन उते सुगंधी ते प्रकाश ते कवि जी कहिंदे ने ओ दुनिया दे लोगो गल करन तो पहला सोचियो ए ओ भागां वाली अमड़ी है जिस राही करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक इस धरती ते आउंदा पे। उथे कवि जी ने शब्द वरते ने कह लगे कालू ती वैसे जिस अंदर अत शोभा सो बने सो मंदर जदप भूखन सकल उतारे भावे माता जी ने गहने ला दिते तदक तदक सुंदरता अदक उजारे। कह लगे सुन संदेह करे जे को जे सुन के कोई शक करे। कह लगे कोट ब्रह्मांड जास दा सो ते निवास किनू जे थाई क्यों ना होए तै शोभ सवाई जिस थां ते करोड़ां बंडमंडां दा मालक आ रहा है ओदी शोभा प्रफुल्लित क्यों नहीं होवेगी। धन गुरु नानक साहिब जी दी आमद राय भोए दी तलवंडी ते होई सब तो पहली जिन्हों दात मिली मैं उस स्थान संबंधी अर्ज करनी। सब तो पहला एक मुसलमान औरत है जिन्हें मेरे गुरु नानक साहिब दी कृपा नूं माणे आगमन वेले जिदे ते रहमतां दा मीह वरसिया ते सिख तवारीख ने उस दा नाम दसिया सी दौलतां दौलतां दाई किसे दे घर बच्चे दा जन्म होना ते पहला कहिंदी सी जजमान जे मालक ने तेनू पुत्र दी दात दिती ते मैनू गरीबनी नू दान पुन करदिया किते खत खिच ना ले। कहिंदे ने सिख विद्वान के मेरे सच्ची सरकार दी जदों आमद होनी सी ते बाबा कल्याण दास जी नू इस दौलतां दाई ने कहा सी कह लगी देख रब ने अगे तेनू भगती दा स्वरूप धी दिती है ते जे खुदा त्रुट के तेनू इस वार पुत्र दी दात दे ते मैनू गरीबनी नू चार मन दाने दे दई कि सियाल विच पेट भर के बच्चे रोटी खा सकणगे क्योंकि घटना कत्तक दी पूर्णमाशी दी है। कहन लगे जे वाहिगुरु जां खुदा पुत्र दी दात दे ते किरपा करी तन ढकन नू वस्त्र दे दई सियाल सौखा निकल जाएगा कुछ टके दे दई। कहिंदे ने कि जदों मेरे साहिब दी आमद होई सब तो पहला दीदार इस दौलतां दाई ने कीते ते जदों बाहर आई ते बाबा कालू जी नू शब्द कहे सन कहन लगे जदों वधाई दिती ते बाबा कल्याण दास जी ने थाली भरी कोई रुपया दी दौलतां दे अगे कीती। जन्म साखी विच इक बचन लिखे है कहिंदे ने हाथ ला के थाली नू कहन लगी रहन देवे मैं त्यार मैं ता बहुत रजी। शब्द की कहे रहन देवे मैं त्यार मैं ता बहुत रजी। जे पुछया बाबा जी ने के की कारण दौलतां ए रुपये थोड़े ने तू दो चार दिन अटक तेरे घर अनाज भी दियांगा तेरे घर वस्त्र भी भेजांगा। अखां भर के कहिंदी नहीं हुण मैनू दौलत दी अनाज दी ते कपड़िया दी लोड़ नहीं मैनू सब कुछ मिल गया है। कदी तके उस दे भावना दे शब्द बाबा जी ने कहा कौन सी तेनू ए देण वाला। कहिंदी हकीकत नाम दी दौलत सा मन करके ते कर्मा करके भुखी सा पता नहीं अज तेरे पुत्र ने पहली वार जदो मुस्कुरा के तके है अज मैनू वाकई अंदरों ने दौलतमंद कर दिता। ओदी पहली मुस्कुराहट ने मेरे जन्मा जन्मा दी भुख दूर कर दिती है। हां हुण झोली अड्डांगी जरूर पर ओदे चरणा विच जिन्हें एक वारी तकिया ते मेरे अंदर दी भुख चली गई। प्यारियो पहली दात दौलतां दाई नूं मिली उस तो अगे तुरियो पहली सिखी नूं कमाण वाली सत्कार योग बेबे नानकी। मैं संखेप विच अर्ज करनी चाहना उस स्थान संबंधी उस घर विच बेबे नानकी दे नाल मेरे साहिब खेडे ने ते जदों सुरत संभाली बेबे ने ते एक गल कहिंदी सी हजूर जदों सुल्तानपुर कोल गए ना ते कहिंदे ने बेबे जी चरणा नूं नमस्कार कर लगे ते साहिब ने अगो मत्था पकड़ के कहा बेबे तू वड्डी थां ते वें मेरा फर्ज बनदा है झुकना ते नेत्रां विच नीर भर के कहा सी मैं कल्ला तेनू वीर नहीं मैं अपना पीर जान के तेनू नमस्कार करनी तू मुर्शद है मेरा। कदी तक्यो एक खिन विचों निकल के बेबे नानकी ने सारी जिंदगी गुरु के पाणी गुरु की रजा ते गुरु ते हुक्म विच रही जदो हजूर वहीं विच गए ने भावा अज दे तारकिक विद्वान कहिंदे ने वहीं तो पार चले गए

बस परमात्मा दा जेड़ी खेड़ है ना, परमात्मा दा जेड़ा नियम है वो बड़े कमाल दे ने, वो फिर एक ना एक दिन फैसला कर दे ने। बारों बंदा पावे जिन्ने मर्जी नजारे लेंदा फिरे, अंदरों उस बंदे दा बहुत बुरा हाल होंदा है। जिन्ने बंदा गलत काम करता जाएगा उन्ना अपने आप तो दूर होंदा जांदा है, उन्ना ही दागी होई जांदा है, उन्ना ही फिर दुखी होना पैंदा है। अरदास करते रहिए सच्चे पातशाह गंगू वर्गे जिन्ना ने बेड़ा गर्क कर लिया, अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, सब कुछ खत्म कर लिया, सच्चे पातशाह साडे वर्गियां नूं बचा के रखियो। अज सारे आपां बहुते साडे च ओह है जिहड़े गंगू दे नक्शे कदमां ते तुरन वाले हां। उत्तों उत्तों ना ऐ करदा है बदाती जी मैं तुहाडे नाल हां, जी मैं तुहाडे नाल हां, आपां वी ऐ करदे हाथ ऐ जोड़दे हां, वड्डे वड्डे उत्ते कर करके बाहवां मुखाउंदे हां वी असीं बहुत प्यार करदे हां गुरु नाल, पर साडे विच वी कोई कदर नहीं। विरला है जिहड़ा दिलों करन वाला है, दिखावा गंगू ने कीता सी असीं वी बहुते दिखावे आ गए, बहुते असीं दिखावे ही करदे हां। मैं कल वी बेनती कीती सी गंगू घरे लै गया, गंगू ने कदर नहीं कीती, असीं किन्नी कु कदर करदे हां। गुरु ग्रंथ साहिब नूं पता ही नहीं किन्नी कु वारी घरे लै के गए हां, सवा कदर करदे हां। सवेरे गुरु ग्रंथ साहिब आए हुंदे हैं, शाम नूं शराबां चलदियां हुंदियां, शाम नूं उसे घरां दे विच तुसीं वेखो किवें नाच चलदे है, किवें डीजे चलदे है, सब कुछ भुल्लिया होया हुंदा है। गंगू गंगू नूं असीं कहिंदे हां वी गंगू, असीं बहुते गंगू दे नक्शे कदमां ते चलण वाले हां। ते अरदास करते रहिए कि हे सच्चे पातशाह सानू बचा के रखियो, पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखन हारे। मेरे रब जी कहिंदे शिकारी ने पंज, वकार ने बहुते, जम ए वकार ए शिकारी बहुते है, जिंद कली है। मेरे रब जी साडे ते कृपा ही रखियो।

घड़ी जब बीती सुनी अजू ना आयो तर भवन धनी पाखंतन बाज बजायला गरुड़ चढ़े गोविंद आयला। ते एथे एक गल परमेश्वर ने कई बाणी विचों कहे ता धरन अकोडी करूं कहे ता लेकर ऊपर धरूं कहे ता मुई गऊ दियूं जी आए सब कोई देखा पति आए। एदा मतलब एक भगत दी खिच लई जदो ओ पुकार करदा है ते आवाज आउंदी है नामदेव तेरी खातर मैं धरती नूं भी घर कर सकना वा मरी गां जिंदी कर दित्ती। बाणी मुताबक मैं अर्ज करां तीन चार उदाहरणा ने लोकां दे मन विच इक तर्क सी कि जे अंगियारे फुल ना बनदे इब्राहिम डोल गया सी जे थम ठरदा ना प्रहलाद डोल गया सी जे गंगा दियां लहरां जंजीर ना कटदियां जे हाथी सुभा ना बदलदा ते कबीर दा की बनदा। ते कहन लगे जे नामदेव तेरी खातर ओ भगवान ए शब्द ना वरदा तेरा की बनदा। ते प्रोफेसर साहिब सिंह कहिंदे ने गुरु अर्जन देव ने शंके निवृत्त कर दिते कहन लगे जे तपदी होई लो भी अपना सुभा ना बदले जे बलदे होए अग दे पथ भी सुभा ना बदलन जे उबलती कोई पानी दी देग भी अपना सुभा ना बल्ले बदले ते रब नूं इश्क करन वाला इन्हां विचों भी प्रवान हो जांदा। गुरु अर्जन देव सामने पहला उन्हां ने तत्ती रेते ते बिठाया परत के जदो तीजा दिन आया सिख विद्वान कहिंदे ने अज पानी दी देग उबाली गई है थले अग दे भांबड़ बाल दिते उधर सूरज अग पिया सड़द इधर थले पानी दे अग पई बलदी है। ते गुरु अर्जन देव जी नूं बाहर लियांदा ते सतगुरु नूं उबलदी देग विच बैठन लई कहा गया। कदी तको खां जेड़ा गुरु सिखां दे अंदर नूं ठंड देंदा है जेड़ा दीन दुनी दा पातशाह मेरा सतगुरु सिखां नूं रूहानियत दे सोमे नाल जोड़दा पिया ओ गुरु अर्जन देव जी उबलदी देग पर नाल इक गल कह दित्ती मुर्तजा खां चेते रखी रंग दो तरह दे ने एक कुसंबे दा दूसरा रंग मजीत दा। कुसंबे दा रंग तां ठंडे पानी दे छत्ते मारिया भी उतर जांदा है पर मजीत दा रंग इन्ना कु पक्का है जे ओनू गर्म पानी दे विच भी आपां बस्तर नूं पा दईए ते मजीती रंग कदी भी गर्म पानी दे प्रभाव नाल उतरदा नहीं। गुरु अर्जन देव उन्हां ने केवल बाणी विच कहा नहीं मैं एक अर्ज होर करनी है अज तीकरां सारे धर्म ए कहिंदे ने कि मनुख ने जीवन किवें जीना है हर कोई कहिंदा है कि जिंदगी मिली है मनुखा जन्म मिले है इस जीवन नूं किवें जीना है। ते प्रोफेसर प्यारा सिंह पद्म लिखदा है कहिंदा शायद ए पहली उदाहरण मिलेगी दुनिया अंदर आम धर्म कहिंदे ने जन्म मिले है ते जीना किवें वे ओ कहिंदा पर गुरु अर्जन देव कहिंदा है जे जन्म मिले है ते जिंदगी बतीत किवें करनी है जे मौत आवे ते मरना किवें। साहब ने जीवन दे जात नाल मरण दी जात भी दसी है हजूर ने बाणी विच नहीं कहा कहन लगे क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए यही ता एक मरण दी जात है जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। केवल जीन दी नहीं मरण दी जात भी है। गुरु अर्जन देव जी नूं तत्ती उबलदी देग विच बिठाया है ते उस गुरु दा किरदा गा रहा सी सजनो मेरा अंदर ता नाम विच रंगया है ते सह पढ़दे पैसन जाको हर रंग लागो इस युग में जिदे अंदर नाम दा रंग है मजीत दा रंग है सो कईत है सूरा आत्म जिणै सगल वक ताकै जाका सतगुर पूरा तुसी ओदे अंदर नू किवें दुला सकदे हो जेड़ा आप कहिंदा होवे ठाकुर गाईए आत्म रंग शरणी पावन नाम ध्यावन सहज समावन संग। गुरु अर्जन देव जी नू उबलती देग विच उबालिया गया सिख विद्वान कहिंदे ने चमड़ी दे फलुए बन गए ने चमड़ी जेड़ी ए सारी तुलसी पई है। गुरु अर्जन देव नू अज फिर रात हवेली विच रखिया ते अगला दिन आया उन्हां दे बचना मुताबक अज भी गुरु अर्जन देव जी दे चेहरे ते लालीए अंदर नाम दी किरपा पई वरस दीए ते मेरे दाता जी अज सारी रात प्रीतम दी याद भी जुड़े रहे ने। जदो दूजा दिन चढ़िया अज जालम ने जुल्म दी इंतहा कर दिती अग बाली ते उत्ते गर्म लोह तपाण वास्ते लोह

0: जो तू दे सो कहां स्वामी, मैं मूर्ख तहन ना जाई। ठीक फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान, तेग बहादुर सी किरिया कई न किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत पयो जगत को शोक, है है है सब जग भयो जय जय जय सुरलोक। धर्म हेत साका जिन किया शीश दिया पर सिर ना दिया, शीश दिया सिर ना दिया। परम सम्मान योग चवल शत दे मालक तन तन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के पावन पवित्र हजूरी अंदर सोभाए मान को बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी गणों खताबली दीवान विच हजूर दी चरण शरण विच आप जी ने हाजरी भरी है। इराकी गुरबाणी का कीर्तन आपने सरवण किया है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां दे शहादत वाला दिन पिछे बतीत होया है, उस गुरु तेग बहादुर पिता जी दे पावन पवित्र जीवन उन्हां दी शहादत दी विचार आपां ने करनी। कोशिश यही करिए कि अरंभता तो लेके संखेप गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी नाल आपां सांझ पाईए। ठीक है कई गुरमुखां नूं जीवनी दे संबंध विच बहुत जानकारी मिली, पर फिर भी कई ऐसे गुरमुख प्यारे संगत विच मिलणगे जिन्हां नूं गुरु तेग बहादुर जी दी जीवनी संबंधी शहादत दा तां जरूर पता है, पर गुरु तेग बहादुर जी होर की बख्शां कीतियां, किवें हर थां ते जुल्म नूं जबर नूं सतगुरु ने सबर दे नाल सह लिया। आओ उस गुरु तेग बहादुर जी दा धरिए ध्यान, जिस गुरु तेग बहादुर जी दा आगमन अमृतसर दी धरती ते होया है, गुरता गद्दी बकाले बाबा बकाले विच प्राप्त हुई है, ते जिस गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत दिल्ली चांदनी चौक नेड़े हुई, आओ उस गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दा ध्यान करो। मैं अर्ज कीती सी गुरु कलगी वाले कहिंदे ने कदी तू प्यार नाल गुरु तेग बहादुर जी नूं एक वारी चेते कर लई, जिथे तू याद करेगा गुरु तेग बहादुर उत्थे सहायक होणगे। गुरु तेग बहादुर जी दा नां लिया तां भलिया घर विच किसे चीज दी कमी नहीं रहिंदी। साहिब दे बचन असीं पढ़ने आ, तेग बहादुर सिमरे घर नौनिद आवै ताए, सब थाई होए सहाय करो किरपालता। प्यार अदब दे नाल गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी चौथे गुरुदेव जिन्हां दे पावन पवित्र अस्थान नूं तक के गुरु अर्जन साहिब जी ने एक बचन कहा सी, हे बापू दिठे सबे थां नहीं तुझ जेहा, बदहो पुरख बिधाते तां तू सोहया, वस दी सगन अपार अनूप रामदास पुर, हर हां नानक तस्मल जाए नाया रामदास सर। उस गुरु रामदास जी नू गुरता गद्दी गुरु अमरदास जी तो प्राप्त हुई है। मैं आरंभ तो इस खानदान दे आरंभ तो तुरना चाहना वा। गुरु रामदास महाराज गुरगद्दी ते विराजमान रहे ने। आप जी दी हजूरी अंदर संतोख सरदा सरोवर एदा भी टप लगा सी। हजूर दी हजूरी विच ही अमृत सरोवर दी सेवा कीती गई। गुरु रामदास जी ने 30 रागां विच बाणी उचारण कीती ते गुरु रामदास जी दे घर विच कहन तो मुराद माता बीबी भानी दी कुख विचों 3 पुत्रां ने जन्म लिया। उन्हां विचों सन सब तो वड्डे बाबा तृतीया जी, उस तो छोटे सन बाबा महादेव जी ते सब तो छोटे सन शहीदां दे सरताज धन गुरु अर्जन देव महाराज। सतगुरु गुरु रामदास महाराज जी ने चवर छतर धन गुरु अर्जन साहब जी नूं दित्ता है। ता ही ता भट्टां ने बाणी विच बचन कीता है, छतर सिंघासन पृथ्वी गुरु अर्जन को दे आयो। धन गुरु अर्जन साहब महाराज इन्हां ने मेरामत कीती, उसे सरोवर दी सेवा नूं अगे वधाया। अगे संतोख सर सी, मेरे गुरु अर्जन साहब ने नाल रामसर सरोवर भी बनाया। रामसर दे किनारे गुरु ग्रंथ साहब जी दी भीड़ लिखी गई। हरमंदर दी उसारी मेरे धन गुरु अर्जन देव जी ने कराई। कोठा साहब दी उसारी भी उन्हां ने कराई। ते याद रखना गुरु रामदास ते गुरु अर्जन साहब दे वेली अमृतसर दी धरती ते एक निवास स्थान बनाया जिन्नू गुरु के महल कहा जाता है। गुरु रामदास जी दे वेले ए बने। गुरु अर्जन साहब महाराज जी ने अपने तो बाद उन्हां दा इको एक सपुत्र है, उन्हां दा नाम है धन गुरु हरगोबिंद साहब जी। गुरु अर्जन साहब तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब गद्दी ते विराजमान होए ने। ते जदो 2 कृपाना मीरी ते पीरी दियां पाईयां, जदो रबाब दे नाल नगारे भी वजे, जदो अमृत वेले आसा दीवार दे नाल शाम नूं गुरु हरगोबिंद साहब ने ढाडी वारां भी आरंभ कीतियां, ध्यान रखना उस तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब बारे भाई गुरदास ने एक गल कही। कहन लगे दुनिया दे लोगो, गुरु रामदास सोढ़ी ने गुरु अर्जन साहब नूं गद्दी दित्ती अपने पुत्र नूं। अज गुरु हरगोबिंद साहब गुरगद्दी ते विराजमान ने। ते एक गल याद रखियो, चली पीढ़ी सोढ़ियां रूप दिखावण बारो बारी हुणे वख वख रूप विच आउणगे। ते सिखां ने अरदास कीती, गुरु हरगोबिंद साहब असीं तुहाडे तों एक जानकारी लैणा चाहने आं, तुसीं समर्थ हो। ते इस गल ने साडे एक शंके नूं भी निवृत कर दिता कि दसां पातशाहियां तों अगे गुरु जीव जोत किसे मनुख देही विच नहीं। धन गुरु हरगोबिंद साहब नूं पुछदे ने, पुछन सिख अरदास कर, 6 महलां तक दर्श निहारी, 6 पातशाहियां तक तां दीदार हो गए, हुण अगे किवें किरपा होणी है। ते भाई गुरदास कहिंदे, अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। ते साहब कहिंदे ने, कलयुग पीढ़ी सोढ़ियां अवचल नीव उसार खिलारी। अखीर विच कहिंदे ने, जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। इथे जुग दा अर्थ 4 जुग नहीं, इथे जुग दा अर्थ 2 बाणी विच वी। ते भाई साहब भाई संतोख सिंह ने शब्द अक्सर वरते है, जुगल पद दोवें हाथ जोड़ के जुगल बंदना दोनों कर जोड़ के जोग जोग सतगुर धरे अवतारी। 6 पातशाहियां तक दर्शन कर लए ने, ते 6 तो बाद 4 पातशाहियां दे होर दर्शन करोगे। भाई गुरदास होरां दी बाणी दी गवाही है। मेरे कहन तो मुराद गुरु हरगोबिंद साहब जी ने 4 जंगा लड़िया ने, 4 जंगा विच फतेह प्राप्त कीती है। ते गुरु हरगोबिंद साहब जी दे घर अंदर 5 सपुत्र होए ने, ते एक सपुत्री ने जन्म लिया है। ते गुरु हरगोबिंद साहब दे वड्डे सपुत्र ने बाबा गुरदत्ता जी, उस तो छोटे ने बाबा अटल राय जी। मैं संखेप विच ए अर्ज करनी चाहना कि समझ पै जाए कि गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन संबंधी बाबा गुरदत्ता जी, बाबा अटल राय जी, बाबा अणी राय जी, बाबा सूरजमल जी,
1: ਤੇ ਜਿਸ ਮੇਰੇ ਦਾਤੇ ਦਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਪੁੱਤਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਅਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ। ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿੱਤੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਅੱਗੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਬਾਬਾ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪਤਮ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਇ ਸਾਹਿਬ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਣੀ ਰਾਇ ਸੂਰਜਮਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਚ ਹੀ ਸਨ 1621 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਲਈ ਚੱਲੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਟਿਕੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੈਰ ਰਾਤ ਗਈ ਏ ਰਹਿੰਦੀ ਏ, ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਰਬਾਬੀ ਸਿੱਖ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਓ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਵਰਤਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਏ ਅੱਤ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਪਰਤ ਕੇ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ, ਨਾਲ ਭਾਈ ਵਿਧੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਖੈਰ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲਿਆ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰ ਬਿਲਾਸ ਦੇ

मणि राय भी शब्द वरते है। भाई सती दास के फारसी तो पंजाबी विच तर्जमा गुरमुखी विच तर्जमा भाई साहब भाई मणि सिंह करते होंगे सन। दो सिख भाई मती दास सती दास, तीसरे सिख ने भाई साहब भाई दयाला जी, चौथे सिख ने भाई गुरदत्ता जी बाबा बुढ़ा जी दी अंश विचों, ते पंजवें सिख जेड़े तुरे ने इन्हां दा नाम है भाई उदय जी। पंज सिख अज गुरु तेग बहादुर जी नाल चले ने, ते इन्हां सिखां नूं भी पता है कि भाणा वापरना है, ते गुरु तेग बहादुर जी दे चरणां दी टेक लैके बड़े प्यार दे नाल सतगुरु दे रंग विच रंगे हुए तुर पए। गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी ने सूरमे दा जिक्र कीता है। असी कई वारी सूरमे दी गल करने हैं ते केवल इत्थों तक साडियां नजरां विच सूरमे दी परिभाषा है कि जेड़ा मैदाने जंग अंदर अपने तन दे टुकड़े टुकड़े करा लैंदा है, आपां कहिंदे आ केवल इह सूरमा है। पर गुरमुखां ने शब्द पढ़िया गुरु अर्जन साहिब जी दा, महाराज कहिंदे ने एक उह सूरमा है जेड़ा बाहर जूझ मरदा है, पर गुरु नानक साहिब दे घर अंदर केवल सूरमा नहीं, केवल सिपाही नहीं। इत्थे एक शब्द पहला वरतिया संत। गुरु साहिब दे घर अंदर केवल शक्ति नहीं, एक शब्द पहला आया भगती। ध्यान रखना भगती ने संत नू जन्म देना है, ते उस भगती विचों पैदा हुई शक्ति ने सूरमे नू जन्म देना। सतगुरु ने बाणी विच खास करके जिक्र कीता है, कहिंदे जाको हर रंग लागो इस युग में, सो कही तह सूरा आत्म जिने सगल वस पाकै, जाका सतगुर पूरा जिन्हें अपने अंदर नू जितया होया है। सतगुरु एहो जे सूरमे बारे कहिंदे ने कि जिन मिल मारे पंच सूर वीर, सो पूरा है कली रे जिन्हें अपने अंदर नू जितया होया है। ए गुरु के सिख जेड़े तुरे ने ए आत्मक जेतू भी सूरमे ने, अपने अंदर दे विकारां नू भी जितया होया है। ते गुरु तेग बहादुर जी जदों तुर लगे ने ते विद्वान सिख कहिंदे ने गुरु गोबिंद राय जी, जिन्हां नू आपां शब्द इस करके गोबिंद राय वरते है कि उस वक्त अमृत संचार नहीं होया। एक घटना सन 1675 दी है। गुरु तेग बहादुर सच्चे पिता तुर लगे ने ते गुरु गोबिंद राय जी ने पिता दे चरणां विच नमस्कार कीती है, ते उस वक्त एक शब्द कहा सी। विद्वाना ने उस शब्द नू सांभ के रखे है, कहन लगे ए पुत्र गोबिंद राय खे बेटा, जिदे कोल तेरे वर्गा घर विच पिछे पुत्र होवे ओनू किसे तरह दी चिंता ते झोरा नहीं, ओनू किसे तरह दा डर नहीं। ते सतगुरु ने कहा सी बेटा झुकना नहीं, जुल्म दी हनेरी सामने अड़ खलोना। ते गुरु तेग बहादुर जी ने जान लग्या 9 साल दे अपने बच्चे नू कुट के छाती न लाया। कहना बहुत आसान है, याद रखना आपां कुछ दिन घर तो बाहर आने ते मोह दियां तंदां परत परत के खिच दियां ने, परत परत के जकड़ दियां ने, ते कदी उस अकसीर नू ते उस हिरदे न तको कि जिस बापू ने अज पुत्तर नू कुट के जख्मी विच लिया, परत के पुत्तर नू मिलना भी नहीं, ते उस वक्त दे हालात समा किन्ना कु करणामल होवेगा जदों आनंदपुर दी धरती तो गुरु तेग बहादुर जी तुरे होणगे। सारे सिख कोल ने सतगुरु तुर लगे, पुत्तर नू घुट छाती ना लाया, माता नानकी आए ने सत्कार योग माता जी। मैं कल अर्ज कीती सी नमस्कार कीती उहनां नू वी, ते एक गल कही सी मां इस संसार दा मिलाप इस तरह जिवें पानी दे तिणके ने मिलदे ने परत के विछड़ जांदे ने, संसार दा मिलाप इस तरह जिवें रुख दे उपर पंछी बैंदे ने समा पैंदा ते उड जांदे ने। मां इस संसार तो एक दिन हर एक ने कूच करना है, पर गुरु पिता दे बचना नू चेते रखी। मैं भी उस दिन कोल सां जिदन गुरु पिता ने ए बचन कह सन तैनू के नानकी तेरे पुत्र ने जो कुछ कर देना वो अजे तक किसे ने कीता नहीं, बचन बापू ने कीते सन, ते मां अज आशीष तू दे तेरा पुत्र अपने बापू दे बचन नू पूरिया करन तुरे। माता नानकी अपने अंदर नू घुट लिया है, भावे किन्ना भी होवे आखिर मां है, ते ओ मां जेड़ी कई सालां तो पुत्र दे नाल है।

जी की फतेह। परम सम्मान योग जुगो जुग अटल सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुबाए मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सतसंगी जनों आप जी वडभागी हो जो अज बुधवार दे विशेष दीवान सजदे ने इस दीवान दी हाजरी भरदे हुए आप जी सतगुरां दे पावन पवित्र इलाही बचना दा कीर्तन सरवण कर रहे थे। जिमें कि पिछले समय विच इस स्थान दी मर्यादा मुताबक हर बुधवार गुरु इतिहास दी विचार आप संगतां नूं सरवण कराई जांदी सी। गुरमुख प्यारियां ने अपराला कीता है ओ इतिहास दीआं पोथियां प्राप्त करके अज तों फिर उस लड़ी नूं आरंभ कर लगे ने। आप जी जिवें भली प्रकार जाणू इतिहास एक उस जंजीर दी तरह जेड़ा साडे वर्तमान तो लैके सानू बीत चुके समय दे नाल जोड़दा है। भावां के गुरु घर दे अंदर साखियां दी परंपरा साखियां दी प्रथा गुरु अंगद साहिब जी दे वेले तो आरंभ हो गई। सतगुरु गुरु अंगद साहिब जी ने भाई बाले तो सरवण करके भाई पैड़े मोखे तो गुरदेव दियां साखियां अंकित कराईयां। उस तो बाद बाबे पिरथिए दी संतान विचों बाबा मेहरवान ने कुछ गुरु का इतिहास इकत्र कीता। फिर गुरु के सिख बेअंत ऐसे हुए जिन्हां ने गुरु के इतिहास नूं काव्य रूप विच भी लिखिया ते वार्तक रूप दे अंदर भी लिखिया। वख वख गुरु साहिबाना दे जीवन नूं बयान कीता। किसे ने गुरु हरगोबिंद साहिब दे जीवन नूं लिखिया कवि सोयन वर्गियां ने ते उन्हां ने नाम लिख दिता गुरु बिलास पातशाह छेवीं। सारा गुरु हरगोबिंद साहिब दा जीवन। किसे ने पातशाह दसवें दा जीवन लिखिया गुरु बिलास पातशाह दसवीं। ये दो ग्रंथ ने एक भाई सुखा सिंह दा लिखिया एक भाई कोयर सिंह दा लिखिया। इस तो इलावा महिमा प्रकाश लिखिया गया एक वार्तक रूप अंदर एक काव्य रूप अंदर। एदे नाल ही मैं एक अर्ज करा जिस विद्वान कवि दा इतिहास तुसी सरवण करदे हो सिख धर्म दे अंदर पहला विद्वान है भाई संतोख सिंह जिन्हें गुरु नानक साहब तो लैके ते बाबा बंदा सिंह बहादुर तक दा जीवन अपनी कलम न लिखे। मैं अर्ज करदे हां इस करके कथा तो पहला भाई साहब भाई संतोख सिंह जी जेड़े बिल्कुल एक गरीब जै परिवार विच पैदा होए ने। इन्हां दे पिता दा नाम सी भाई देवा सिंह जी अंबाले दे नेड़े बुढ़िए पिंड विच रहण वाले सन। इन्हां दे पिता

0: संगत कवि संतोख सिंह ए प्रसंग आप सरवण कर चुके हो कहन लगे ने आज मैं तुहानू ओ प्रसंग सुनाना वा कवि जी मुताबक कहन लगे जिस प्रसंग नू सारी दुनिया जानदी के अमृतसर दी महिमा किवें होई बीबी रजनी वाला प्रसंग भाई संतोख सिंह आरंभ कर लगे ने आपां इस प्रसंग दी विचार करनी आप कृपा करो अपनी सुरती बिरती नू करिए एकागर ते जदों भी आपां इतिहास सरवण करने आ ना देखो किसे भी मनुख दी गल सरवण करने आ कन्ना नल आपां सुनने आ ते बदो बदी साडा मन जिहड़ा ओ सारे नक्शे नू सारी तस्वीर नू चित्र लैंदा गल कोई भी होवे किसे थां ते आपां जाइए भी ना पर गल्लां सुन लईए ते साडा जिहड़ा मन ए उहदी तस्वीर बना लैंदा है जे आम गल सुणिया मन एक फोटो तस्वीर बना लैंदा है ते जदो आपां गुरु का इतिहास सुनने आ ना ते अपनी सुरती नू लै जाइए उस धरती ते जिस धरती ते मेरे गुरु ने एक कौतक वरताए क्योंकि सिख कोल एक बड़ी वड्डी दा ते सुरत दी सुरती दे मार्ग नाल सिख अंदर दे सफर नू तय करके कोहां दूर बैठा भी गुरु के चरण परसद है कृपा करो साध संगत जी एकाग्रता बख्शनी विचार आरंभण तो पहला समूह माई भाई बड़े प्यार अदब दे नाल उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी करो बख्शिश गुरमुखो फिर उचारण करो जी सतनाम श्री वाहे गुरु जी। हां जी करो शुरू इम जोगी
1: वाहेगुरु जीओ इम जोगी तपसी महद प्यो ब्रतंत विशाल सुन पिख नर नारी अचरज पै तिस काल
0: भाई से भाई संतोख सिंह कहिंदे ने इस तरीके नाल ए जोगी वाला प्रसंग सिख संगतां दे सामने वापरिया इस कौतक नू सुन के जोगी किन्नी देर दा अपने सवास रोक के बैठा साहब ने ओदे नाल जिहड़े बचन बिलास कीते सारी सिख संगत जिन्हां विच मर्द भी सन इस्त्रियां भी सन बजुर्ग भी सन बच्चे भी सन सारिया ने कौतक सुन के हैरानी प्रगट कीती है।
1: इतने बिखे झगड़ते तहां दंपत चल आए गुरजां
0: अजे एक जोगी वाला प्रसंग सिख सुनी रहे सन देख रहे सन कौतक नू ते इन्नी देर नू भाई संतोख सिंह कहिंदे ने दंपति एक पति ते पत्नी आपस विच झगड़दे होए उची उची बोलदे होए गुरु अर्जन देव जी दे दरबार विच पहुंचे हन।
1: सोए प्रसंग शोर ते बरनो जथा सुदासर बिद ते करनो
0: कवि जी कहिंदे ने मैं उस प्रसंग नू मुढ़ तो तुहानू सुनाणा चाहना वां के हरिमंदर साहिब ते अंदर जिहड़ा सरोवर है ए जदों प्रगट होया है इस दे प्रगट होण दे किहो जाए अचरज कौतक वापरे शुरू तो सरवण करो।
1: माजे देशपुरी एक है पट्टी नाम जिसी को कहै
0: माजे दे अंदर एक शहर है जिस नू अज भी पट्टी शहर करके पुकारिया जांदा है।
1: तैंको निरपलग राज करंता तुरकन के अनुसार रहंता
0: इस पट्टी रियासत दे अंदर एक राजा सी जिहड़ा छोटे जे रजवाड़े नू कैम करके बैठा है पर ए स्वतंत्र नहीं तुरकां दे मुगलां दे अधीन जो उस वक्त दा राजा है बादशाह ओदे अधीन इने अपने आप नू कीता है।
1: इस ग्रह सुता पंच जन्माई बदत आर बल रूप सहाई
0: कवि जी कहिंदे इस पट्टी दा जिहड़ा राजा सी जां जिहड़ा चौधरी है ओदे घर अंदर पंज धीआं ने जन्म लिया है समय दे नाल नाल ए बच्चियां जवान हुंदियां गईयां इन्हां दी आरबला वधदी गई है।
1: सुंदर अंग रंग तन गोरा कमल लोचनी उर्ज कठोरा
0: परमेश्वर ने इन्हां पंजां बच्चियां नू रूप भी आदा दित्ता है चेहरे दी इन्हां दी सुंदरता कवि जी ने बयान कीती है।
1: दिन में एक होती सत संगन अल्प आर बल कोमल अंगन
0: इन्हें इन्हां पंजां बच्चियां दे विच एक रब दी कृपा वाली पैदा हो गई जिदा शरीर अत दा कोमल है ओदा किरदा भी अत दा कोमल है इन्हां पंजां विचों एक ओ बच्ची है जिदा झुका गुरु की संगत वाले जिदा झुका परमेश्वर दे रंग रतड़े गुरमुखां दी

इस अहंकारी बाप ने यह कह दिता कि मैं तेनू एक कोड़ी दे लड़ लावांगा जिस दे हाथ पैर उंगलियां भी झड़दियां पईआं ने, तू ऐसे जींदे जी नरक भोगेंगी क्योंकि मेरे हाथ विच बहुत कुछ है। ते उस बच्ची ने अपने पिता दी आज्ञा नूं सत करके अपने

है ही सच नानक होशी की सच तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा जब गुर बोले तब विषम होए जाए हम जैसे अपराधी अगर कोई राखे

जो हमारी बेद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम्हार जानो हो आपे खम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता।

ले रामा बोले राम बिना को बोले रे सारे घटा परमात्मा बोलता है ओडे तो बिना दूजा होर कोई नहीं। ते फिर भगत साहब ने इस गल होर समझाने लई शब्द वरते एकल माटी कुंजर चिंटी पांजन खैर बो नाना रे के जिवें एक कुमार भांडे करदा है मिट्टी लिया के एक थां तो मिट्टी लिया दी उस मिट्टी नूं एक पानी विच भेंग के गुन्या परत के चक उत्ते उहदे भांडे तैयार कीते उस मिट्टी विचों एक निक्का जिहा दीवा बना दिता उस मिट्टी विचों उहने एक बहुत वड्डा सारा घड़ा बना दिता उस मिट्टी दे विचों निक्के निक्कियां उहने प्यालियां बना दित्तियां उस मिट्टी दे विचों वड्डे वड्डे उहने बर्तन साज दित्ते। पर साहिब कहिंदे चेते रखियो जदों उसने बर्तन बनाए मिट्टी एक है पानी एक है ते जिस अग दे विचों उहने रखे उह अग भी एक है पर हे मालका एक मिट्टी दे बने ने कीड़ी तो लैके खाती तक एक भांडा उहदे जिहड़ा सारी जिंदगी अमृत लैके अपने अंदर टिकया है एक भांडा उहदे जिहड़ा सारी जिंदगी जहर नाल भरिया रहिंदा है। इह की है तरीक है हजूर ते बचन असीं पढ़े एकल माटी कुंजर चिंटी भांडन खैर बो नाना रे अस्थावर जंगम कीट पतंगम घट घट राम समाना है। ते जदों गुरु नानक साहिब ते बचन पढ़ने हैं ते एक बचन असीं रोज पढ़ने आपे भांडे साजन आपे पूरन दे भांडे बनाण वाला परमात्मा तू आप है किते चोर दे रूप विच भांडा तुरिया फिरदा है किते साध दे रूप विच तुरिया फिरदा है किते ओ खलो के तेनू जपदा है ते किते सारी जिंदगी इह सिद्ध करदा पिया रब नाम दी कोई चीज भांडे दे। इस विषय नूं टेक के माड़ा जिहा सुणियो कहन लगे आपे भांडे साजियन आपे पूरन दे इक नी दुध समाई है इक चुल्हे रहन करे इक नाल विच दुध पिया है अमृत वर्गा ते इक भांडा सारी जिंदगी अग उत्ते सड़दा पिया है। हे मालका इक नी दुध समाई है इक चुल्हे रहन खचले इक निहाली पै सवन निहाली दा अखर अखंदा रजाई बिस्तर इक बंदा ओवे जेड़ा बिस्तरे विच सुता है सारी रात ठंड विचों रजाई विचों निग मिलदा है एक बंदा सारी रात बर्फ विच खलो के सुते हुए दा पहरा देता पे है भांडा तां ओह भी तेरा बनाया जेड़ा बाहर पहरा देता है ते भांडा ओह भी तेरा जेड़ा बिस्तरा लैके निग पिया मानदा बनाए तेरे एक ने दुध समाई है एक चुल्हे रह चढ़े एक निहाली पै समन एक ऊपर रह खड़े। फिर अगला वचन है तिना सवारे नानका जिनको नदर कहे सवारे ओ जांदे ने भांडे तेरे बनाए ने पर जिन्ना ऊपर तेरी नदर हो जाए सवारी दे ओ ने। फिर उस विषय वल अगे तुरां कि सारिया विच एक परमात्मा सवाय मान है जेड़े लोग रब नूं केवल एक थां ते निश्चित करके बाहर जोन की खनेरी चुलांदे ने ते असीं रब दे खुदा दे नां ते चंगे पे कम करने हैं। मेरे गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे को की कूर किरिया विच पूजे जिस बंदे ने सर्व व्यापक रब नूं जान के सारियां थावां ते जान के उन्हूं प्यार नहीं किया केवल कर्म कांडा विच पै गया ते गुरु गोबिंद सिंह कहिंदे को भगत नहीं को कूर किरिया कर लिया है। असीं हजूर दा एक बचन पढ़ने हां काहू लै पाहन पूज धरियो सिर सवैये किसे ने कह दिता कि परमात्मा दे नां ते उन्हें गल विच एक शिवलिंग पा लिया पत्थर पा लिया काहू लै पान पूज धरियो सिर काहू लै लिंग गरह लटकायो काहू लख्यो हर अवाची ये संस्कृत दा शब्द है अवाची अवाची दा अर्थ हुंदा दखन वाला पासा। किसे ने कह दिता हरी तां दखन वाले पासे रहिंदा लोक आसूं बना के उस दिशा नूं जगन्नाथपुरी वल तुर जगन्नाथ दे रथ थले अपने शरीर नूं दे के मारन लगे। मेरे साहिब ने कहा धर्मी पूर किरिया है काहू लै पान पूज करियो सिर काहू लै लिंग गरह लटकायो काहू लख्यो हर अवाची दिशा मैं काहू पिछा को शीश नवायो को भूतान को पूजत है पश को निरतान को पूजन धायो पर सर्व व्यापक नु नहीं समझिया पूर किरिया उलझो सब ही जब श्री भगवान को भेज न पाए। श्री भगवान को भेज नहीं पाया कि मेरे लाल जियो तेरा अंत न जाना तू जल

गुरु अर्जुन विगनन के नाशक, विगनन के नाशक, श्री हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक, श्री हर राय नमो कर जोरी, नमो कर जोरी, गुरु हर कृष्ण मनावो बहोरी।